0: 给我了，是不是？
1: 我俩了，我一把起锅，我一把起锅，完事，你咋的？啊，我这你咋的了？滚了吧，我难看，你咋办？
2: मेलायु मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तक जरुरी सूचना जुमो बेला खेमरिदे गरम ओबोदुरी जेउ बेला सुनो फुरीको दास ओचुदुरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्तक सम्भावना ताई आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त जस खेम नारे वातावरण मिलेने लख्यता असर केने रि उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तक तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुनो नाखार नामेल मे लागिने सज जिमी गिमी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिंदगी को ठेल मेला की नाटी जन धनी में खेता छिपी ताऊ दुबो होकाई
3: गेट्सो छानियाला बल्ला मेला की ने पूरा रंगे नव पूरा ले चौसो खेल गिरी
2: बन जंगल सजा मेरा आज मेरी बानी एमेला एमे उस छानियाला ली उसो कर पोतर राले पार जगे रहते ही
3: सलाई लाइटर सियाला में सचांगने चीज राले जा बंगजारो यामा देने पोला गिने या इतने चीज रह रही थी बन जंगल याल गिमा भाया
2: पिकनिक बन भोज बाको में सचांशु छिन्नी मेले चौसो सही देखे खिनाये बन जंगल उसो छानी दाई के बारी पर सुरोद विधि ओरे बने कुबार
3: नान्थार नामलो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने होने ढाल अनुगमन दुने व्यवस्था चौसंगी दुए
2: गेचो छामेला खोले चौसी पोलिए हरिदे तरिम गाई गे जमेके लाइजु अब नजरे बनाए गेम ये लो गे जमेके मालाए औलेम लाइयो के लाइए
3: वन जंगल स जुडिसियो घेम बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा रस चौसो छिमी ने चौसो सहिदेकी खेले
2: वन जंगल मेला दुगे माइए लागि किनि पाँचजना खर्नामदार मिलिदिए भने सानो मेघेसरी
3: बतास उचुलिजु बेलाको घिजिङ्गेको टल मेघे सताङ्गिने हेनोखेम छिन्ने मे चाउसो घेसरी
2: मे लागि निताई गे मने गे बचिए सुनो अरूले भने गे बचैया
3: के छ छानला पोयाल मे लागि किसन किने गे छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालय ल खबर गिरिए
2: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: সেই দাদামা হলা দানা হাল দেও নানি
1: কইলেদেখি ভন্ডা আছো দানা ছৈন কাম বাদ ল্যাউনি হ ভনে ইমুরালে শূন্য কাম নাউন্দম ভনে তো দিমাগ খারাপ
0: ওহো বুসুককে দিছিসু যাও যাও দিমাগ চুরি খেলনা জিতে রুবা স্টোর বারে দানা লিয়ে আও তো
2: নৌকা গিরিলা সবই চলা লেখানে দানা পাইনি রেখা
1: বুনু যাও দানা লিনো
2: লালা
3: हजुर यदि तपाई पनि पशुपन्छी वा माछाको लागि सर्वोत्कृष्ट दानाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ ग्लोबल फिडका सबै खाले उत्कृष्ट दाना सुपथ मूल्यमा उपलब्ध रहेको छ। साथै बोइलर लेयर्स वा गिरिराज चल्ला पाल्न चाहेमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोप्राइटर रूपा गुरुङ, मोबाइल नम्बर 9847 50571 र 9855 24171। रूपा स्टोर्स रोल्पा नगरपालिका 4 दिबाङ टुडेखेल रोल्पा।
4: स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाको खाद्य पदार्थमा प्रयोग भएको विषादीको असर न्यूनीकरणका उपायहरू बारे महत्वपूर्ण जानकारी। अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौं। स्थानीय जडीबुटीहरू तितेपाती नीम डिमोर बोझो खुर्सानी आदि

0: मेरो लागि उनीहरूका लागि त सुनसरी गाउँपालिका यो मस्तज जरुरी सूचना झुङ्गो पेला खेमरिदे गरम ओभोतिनी ज्याउ पेला सुनो फुरी कता ओचुरी ज्याउ आउ पेला क वन जङ्गल ल भे लागिने मस्तज सम्भावना ताए आउए गिने प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त जस खेम्नादे वातावरण मिलेने ल घेप्ता असर किएने रि उमुल र थङ्ने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तज तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखा नामे ल भे लागिने सज जिनी गिनी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिन्दगी कोठेल मेला किनाते जन धने में खेता छिपी ताऊ खोकाई
1: ये छोटा मेला बन मेला किने पूरा रंगे नौ पूरा ले चौसे खेल गिरी
0: बन जंगल सजा मेरा आज मेरी बानी एमेला एमे ओ छोटा मेला ली उसको कर पोतर राले पार जगे रहते ही
1: सलाई लाइटर सियाला मैं सचांगे चीज राले जा बंगजारो यामा देने पोला किने या इतने चीज रह रही थी बन जंगल याल के बाबा या
0: पिकनिक बन भोज बाको मैं सचांग सो छिन्नी मेले चौसो सही देखे खेनाये बन जंगल ओ छोटा मेला के बारे को चुरोद विधि ओरे को नहीं कुबार
1: नान्थर नामलो लिज्याउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हुने ढालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसो गिरिए
0: गेछो छामेला खोरेल चाउसी खोरिए होइदे तरिन गाई गेज मेके लाइजु अब नजरे बनाए गेङ गेल गेज मेके मालाए औले लायो के लाइजे
1: वन जंगल स जुडिसी हो गेङ बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा र सताउसो छिने ने चाउसो सहिले के खेले या
0: वन जंगल मेला कि गेमाइए ला दिकिनि पार्सना खर्नामार मिदि देखो नै सानो जन हे गेसै
1: बत्तास उचली जु बेला त हिजिन के कोटल हे के सताकिनि हे नखे म छिन्नि ने चाउस गेसै
0: ने लागिनि नि दाई गे मने के बचिए सुनो अरुले मने के बचया।